अनंत चरण तव माथे, संत चरण तव माथे, चांदना ग्रह हुए अंधेरे, चांदना ग्रह हुए अंधेरे।

होए पै साहेब तुम माले होए साहेब सदा हजूर है समके छोड़ कट के अंतर जोत करे।

0: चले गए ता चौधरी सिखा ने गुरधामा दी बेअदबी करके दिल दा साड़ कड़न लगी। पर खालसा जी सिख कौम सिदकी परवानिया दी कौम है ते परवाने कदे भी मौत तो डरिया नहीं करदे, अपने प्यार पिछे जान कुर्बान कर देंदे हन ते कुर्बानियां तो बाद इनकलाब आउंदा है। इनकलाब ने कदे भी रुक सकदा, ए पता नहीं कदों तरथल पै जाए, अत्याचार सरकारी भी नहीं रहना, ए भी पता नहीं कदों को
1: ठहर पै जाए।
0: ओ कौम ने मारिया मुक सकदी, जिस कौम नू मरन दा चल पै जाए, मुल पेंदे ने सदा कुर्बानियां दे पावे अज पै जाए ते पावे
1: कल पै जाए।
0: जदों लाहौर दे गवर्नर खान बहादुर जकरिया खान ने सिंघां दे सिरां दे मुल रख दिते ता लालच विच आके मंडियाले दा चौधरी मस्सा दीन रंगड़ लैके पुलिस दियां गार्दां सन 1740 ईस्वी नू अल्लाहू अकबर दे नारे लाउंदा होया आ हरिमंदर साहिब ते काबज होया। पापी ने पावन बीड श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नू पाड़ के लीरां लीर कर दिता ते पावन बीड दी थां अपना पलंग डाह के बह गया। बाणी दी थां नाची गंदे गाने गाउण लगी, अमृत दी थां शराब ते देग दी थां बकरे हलाल होण लगे। जालम हुक्का पी पी के पाण चब चब के थुक दियां पिचकारियां पर कर्मा विच मार दे। जालमा ने मिट्टी पा पा के पावन सरोवर नू पूरना शुरू कर दिता। जदों ए हालत पिंड कंग दे रहण वाले सरदार बुलाका सिंह ने देखी तां सिंह दे सीने विच अग लग गई, पर किसे स्याणे दे कहण ते दिल नू काबू विच रखिया ते जंगी खालसे नू खबर करन वास्ते तुर पिया, क्योंकि सिंह उस वक्त पहाड़ां दियां कुंदरां या जंगलां बेलियां विच लुक छिप के अपना समा गुजार रहे सन। सिंह कंसोआ लेंदा होया बीकानेर दी धरती ते पहुंचया ते उत्थे जाके बाबा शाम सिंह नारली ते जथेदार बुढ़ा सिंह जी नू मिलिया। जदों जथेदार बुढ़ा सिंह जी ने पंजाब दा हाल पुछया तां सरदार बुलाका सिंह दियां अखां विच पानी आ गया। जिस तरह सरदार बुलाका सिंह रो रो के हरिमंदर साहिब दी बेअदबी दा हाल दस रहा है, उस समय दे दर्दनाक दृश्य नू बड़ू साहिब दियां बीबियां दा ढाडी जथा आप जी दी सेवा विच

आप जी विसाखी का पुरब मना रहे हो, अलगीधर पातशाह जी ने खालसा पंथ की अज साधना की सी विसाखी वाले दिन, ते शब्द भी उन्होंने ही है अलगीधर पातशाह जी का। दोवें शब्द राग विच दास पढ़ेगा, दोवें शब्द कलगीधर पातशाह जी दे ने। पहला शब्द जो मैं पढ़ के सुना देवा, क्योंकि आप जी नूं कई बारी समझ नहीं आवेगी, कई तुका दी अस्थाई दी तुक है। दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, कि गुणन को पहार है। अकाल उस्तत, ओ वाहिगुरु गरीबां दा मालक है, दीनन को दाता है, ते दुष्टां दा ओ नाश करता है, ते अपने सेवकां संतां दी ओ रक्षा करता है, ते ओ गुणां दा पहाड़ है। पहाड़ मतलब दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, गुणन को पहाड़ है। तेज हूं को तर है, के राजसी को सर है, के शुद्धता

सत्ता की बाण है कि बुद्ध को उधार है, सुंदर स्वरूप है कि भूपन के भूप है, के रूपों के रूप है कि कुमत को प्रहार है। ये शब्द रीत जो राग दास शुरू कर रहा है, राग है पटियाल। पटियाल भी दो तीन तरह गाया जाता है, बिलावल ठाठ नाल, मारव ठाठ नाल, ते अस्थाई है यदि दस मात्रा छत्ता। उस तो बाद इसे ही बारह मात्रा विच करके दास ने गाना है। सब तो पहला दस मात्रा झपता, दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है के गुणन को पहार है। आप जी श्रवण करो। उस तो बाद जो अगला राग होएगा वो होएगा समेदा राग शुद्ध सारंग। मेरी अभय बिनती सुन लीजे, हे रव हे सस हे कर नानिद, मेरी अभय बिनती सुन लीजे। दूजा शब्द रीत राग जेड़ा शुद्ध सारंग विच तीन ताल विच होवेगा, पहला जपताल ते इकताले विच आप जी श्रवण करो।

जगत नामदेव जी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असीं अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। भगत नामदेव जी अपने जीवन का जो निचोड़ है वो दस रहे हैं, ताकि सानू भगत जी के इन शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं, मैं अंधलहे की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं अन्ना हां, अंधा हां, पर तेरे नाम की स्टिक जो है, तेरे नाम की जो छड़ी है, वो मेरा आसरा है। पाप के तेरे नाम की मैनू सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा है। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम की छड़ी हाथ च होण तो बिना मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। जीवन दे विच अत्यंत खड्डे हन, टोए हन, उतराव चढ़ाव हन, उन्हां दे विच जद तक तेरे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच है, ओ मेरा अंधले का आसरा है। तेरा नाम खुंदकारा। फिर आखते हैं, मैं गरीब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मस्कीन, बिल्कुल जो खाली हो, जिसके पास कुछ ना हो। पर कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही गरीब हां, क्योंकि तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम मेरा आधार है। तेरे नाम तो बिना मैं अपने आप नू गरीब और मस्कीन समझांगा, पर जब तेरा नाम मेरे पास है फिर मैं गरीब नहीं रह जांदा, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी बाणी च आखदे हन,

नाम जपण तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। सानू समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है। मेरा सुनना ही नहीं चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अगर असी नाम जप रहे हैं तो समझ लो असी पूजा कर रहे हैं। अगर असी रोजाना नाम नहीं जप रहे तो कोई पूजा नहीं कर रहे। बाबा जी अगले पूजा कीचे नाम ते आइए बिन नावे पूज ना हो। महाराज जी आप जी का तीर्थां के संबंध की ख्याल है? स्पिरिचुअल क्वेस्ट दे विच इनलाइटनमेंट अटेन करने वास्ते, दुखां दा छुटकारा पाउण दे वास्ते लोग तीर्थां ते जांदे हन, पिलग्रिमेजेस ते जांदे हन, जिन्हां नूं होली प्लेसिस आख्या जांदा है। इस देर इज सच थिंग। महाराज जी आखदे हन साडे वास्ते नाम जपना ही तीर्थ ते जाना है, क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा, खुद ही तीर्थ बन जाएगा। तो साडे वास्ते तीर्थ ते जाना भी नाम जपना ही। कहते हैं तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ भी नाम है।

गुरु महाराज ये दसो बहुत लोग वेद शास्त्र सिमरतियां ये लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि असी भी वेद शास्त्र प्राण सिमरतियां आदि पढ़िए। महाराज ये आखते नहीं साढ़े वास्ते नाम जपना ही वेद पढ़ना है।

नाम जपना ही साढ़े वास्ते वेद और शास्त्र है। कहते हैं नाम हमारे वेद और नाद, फिर ये गारंटी करते हैं कि नाम जपन के नाल साढ़े ऐस लोक दे भी परलोक दे भी सारे कार्य पूरे हो जाते हैं।

ट्राई टू रिमेंबर दिस लाइन, नाम हमारे गुरु की से, क्योंकि गुरु की सेवा दे वास्ते बहुत ही कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इंसान थां थां थां थां ते सेवा करने की बजाय बेअदबी करी जाएगा, गुस्ताखी करी जाएगा और सेवा करने नाल हौमे वधाई जाएगा। पर नाम है जो उसकी आत्मक अवस्था नू उच्चिया उठाएगा, हंकार नू मिटेगा, अते उस दे विच ही सिर्फ गुरु की खुशी, और किसी गल गुरु की खुशी नहीं। हुण तक आप जी ने यह सुनया, भगत नामदेव जी आखते हैं नाम मैं अंधा हां, जीवन दे रस्ते उत्ते जे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, किते पहुंच नहीं सकता। नाम कहने मेरे जीवन का आधार। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दे बाणी दे विचों जो मैं प्रमाण दिते हैं वो ये कहते हैं कि नाम ही नाम है साडे घर दे विच, नानक के घर भूल गयो केवल नाम, नानक के घर केवल नाम। कहते साडे घर सिर्फ केवल नाम है और कुछ नहीं, नानक के घर केवल नाम, नानक दे घर दे विच सुप्रीम टेक्निक जो है, मेथड जो है, वे जो है वो सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जना उदरे सारा संसार रोगी है, उसका एक ही दारू है, एक ही इलाज है, वो की है नाम। संसार दे विच बहुत इग्नोरेंस है, अंधेरा है, तो दीवा की है नाम। लोग अत्यंत लोग तीर्थां ते तुरे फिरदे हन, गुरु जी महाराज कहते हैं तीर्थ भी नाम ही है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है। कहते नाम ही साडे वास्ते वेद शास्त्र है, नाम ही साडे वास्ते, नाम जपना ही रब की पूजा है, अते नाम जपना ही गुरु की सेवा। सो ए है नाम की इंपॉर्टेंस। समा समाप्त, आज सिर्फ उस विचार नू साढ़े आठ तक आते सो हुण तक असा यह सुने है कीर्तन का पहला हिस्सा के गुरु बाबा जी दे घर दे विच केवल नाम है, नाम ही दवाई है, नाम ही दीवा है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही पूजा है, नाम जपना ही सेवा। तो आओ प्यार नाल एक दफा उस पंक्ति नूं हुण गाइए, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंधले दी टेक छड़ी सोटी। कहिंदे ओ वाहिगुरु तेरा नाम है, उस तो बिना मैं चल नहीं सकता, अते जो वाहिगुरु दे उस नाम दी छड़ी तो बिना चलण दी कोशिश करदे हन ओ गिटे गोडे जरूर तड़ाणगे, ओ गिरणगे चोटा खाणगे। सो आओ वाहिगुरु जी दे नाम नू अपना आसरा बनाइए, समझिए अते गाइए, फिर कीर्तन दा थोड़ा जा अगला हिस्सा मैं आपकी सेवा रखांगा।

अपने मन वृत्तियों जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार में अपने अंदर टिका के रखो जो सुने। इतना कुछ सुनने के बाद नानक के कर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगानु खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हों का इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु की सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिराकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनु प्राप्त करने की इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो, जो कि तमाम चीजों का इलाज है, किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान के अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिए है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिए है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिए है। जो इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीकर हां नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनु देखो कितनी है। वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सैटल हो ही नहीं सकती, उसनु चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

सुखमनी पड़िया कर। सुखमनी सुखां दी दाती है, इस विच 24,000 अखर ने ते 24,000 सुवास प्राणी नित दे लेंदे। जेकर एक पाठ भी शरदा नाल कर लवे ता 24,000 सुवास लेखे विच आ जांदे ने। इन्हां ने हाथ जोड़ के

बाबा जी दे चरना चरिया दो चार दिहाड़े नानक सर ठाठ विखे बाबा जी दे चरना विच सेवा करदे रहे पति पत्नी ते नाल नाल हर वेले पंक्ति पढ़दे सन प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद ते परमेश्वर दी बख्शिश होई क्योंकि महापुरखां दी गवाही सी साड़ी अरदास परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि साड़ा परमेश्वर नाल कोई संबंध ही नहीं पर नाम जपण वाले वो तो हर वेले चेते रखते हैं सतनाम श्री वाहिगुरु उना दी अरदास अकाल पुरख कदे बिरथी नहीं जान देंदा ता ए नाम जपण वालियां दी शरण विच आए सन परमेश्वर ने बख्शिश कीती महापुरखां दी गवाही।

मथा टेकिया। बाबा जी ने आख्या भई आओ ब्रह्मखो किवें आना होया, अखां विचों नीर वह तुरिया। बाबा जी तुहाडा दिता सबो कुछ है भी ते कुछ भी नहीं, यार ना लाखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जद इना ने आख्या महाराज सबो कुछ है भी ते कोई नहीं, बाबा जी ने आख्या भी

धन दौलत संपदा कौन सांभेगा। बाबा जी ने आख्या भी पलिया पलाया पुत्र तेनू दे दिए। इना ने आख्या महाराज जिवें आप नू भावे। बाबा जी ने उस जोड़े नू बुलाया ते नाल हुक्म कीता कि हर वेले ए पंक्ति पढ़ दे।

घर बार त्यागिया जंगल दे विच निरंकार दे गुण गा रहे हैं ते तू इत्थे भी साढ़े पिछे आ गया तू साढ़े कोलो की लेना है आख्या मैं लेना नहीं मैं तो तुहानू कुछ देना चाहना आख्या की देना चाहना जेकर तुसी नाम जपना छड़ दे

अलपग हां कुछ समझ नहीं लगी। आखिया जिवें गड्डे दे हेठां दोने पहियां दे विचाले तुरा होंदा है ना, इस तरह आपां तुरा

सुखमनी दा नाम पानी दा तुरा बनना है। सेवका ने आख्या जी सत वचन। बाबा जी ने आख्या जिथे एक दो पाठ जा पंज सत पाठ सुखमनी साहब दे रोज कर दे हो ना, हुन लगातार सुखमनी दी बाणी।

बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वालियां ने निरंकार नाल जोड़िया, क्योंकि आए तां असी निरंकार दे करों हां, पर संसार विच आके परमात्मा नूं भुल जाने। ता ब्रह्म ज्ञानी महापुरख रब दे प्यारे ए सानू याद दिलाउंदे ने, बई तू नाम जपना है।

इस तरह बाबा जी ने पूर्ण पाए कि किवें सिख ने गुरु ग्रंथ साहिब नाल प्रीत पाउनी, किवें हाजिर नाजर समझ के भोग लगाउनी। आप क्या करदे सन, जदों भी प्रसाद छकिए ता आखिए गुरु नानक तेरा दिता खारे, जदों भी पहनिए ता आखिए गुरु नानक तेरा दिता खादा पहन रहे हैं, तेरी बख्शी सदका सारियां खुशियां मान रहे हैं। ता इस तरह बाबा जी ने कई पूरने पाए, ते जो कोई भी आंदा उसनू यही कहंदे भाई एक दा हो जा, बहुते दरवाजियां दा प्रौणा।

पूर्ण प्यार ते सत्कार विच गज के आखो सतनाम। साधु कौन है जिन्हें मन नु साध्या है, महाराज मैनू उन्हां दा मेल करा। श्रोमणी कमेटी ने भी

0: कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागे हर फिरे, कहत कबीर कबीर हरी पिछे पिछे फिरदा पे कबीर।
1: ये कड़ी पौड़ी
0: गुरु जेड़ा है वो सिख नू प्यार कर लगता है।

जग में परवरे निरंकार आप गुरु नानक दे रूप विच संसार ते प्रगट होए ते फिर वही गुरु नानक अपने प्यारियां दी संगत विच अपने प्यारे गुरसिखां दे विच दर्शन दे रही है ते शब्द रूप विच बैठा होया अपना विचार दे रहा। कदे साहब कलगीधर पातशाह ने कहा सी ना गुरसिखां नूं, सिखां ने पुछिया महाराज तुसीं तां शरीर करके साथों अलग होना लोड़दे हो, असीं की करांगे। साहब कहण लगे की चाहुंदे हो कि महाराज दर्शन किदे करांगे, गल्लां किदे नाल करांगे, पूजा किसकी करांगे। साहब कहण लगे पूजा तां तुहानूं मैं पहलां ही एक अकाल दी समझा चुका, पूजा अकाल पुरख दी करनी। मेरा दर्शन करना है तां खालसे दा दर्शन करना, मेरे नाल गल्लां करनियां ने गुरबाणी दी विचार करनी, गुरु के वचना दे अनुसार ही होगे, गुरु के वचना नूं ध्यान नाल पढ़ो सुनोगे, गुरु नाल गल्लां करदे जापोगे। इत्थे भाई साहब कहिंदे ओही वाहिगुरु अकाल पुरख गुरु दा रूप धारण करके प्रगट होया ते फिर शब्द विच समा के बैठ गया ते संगतां विच गुरसिखां विच बैठ गया। जद ऐसा होके बैठा है तां गुरसिखां दी मन्नेगा, साध संगत दी बेनती ते अरदास प्रवान भी करेगा, उन्हां दी लोड़ां दा ख्याल भी करेगा। भाई साहब कहिंदे नूं करन कारण समर्थ वाहिगुरु साध संगत दा करे कराए, सारा कुछ उहदे भंडारियां च भरिया पिया पर साध संगत दा दे दवाया, साध संगत जिन्हू चाहे दवा देवे, जो चाहे लै लवे। पार ब्रह्म गुर रूप होए साध संगत गुर शब्द समाया, पार ब्रह्म गुरु दा रूप होकर के साध संगत विच गुर शब्द बैठा है, जिसनू लोकां ने जग भोग जोग ध्यान कर अनेकां कर्मकांडां दे नाल अनेकां जतनां दे नाल पूजा परे ना दर्शन पाया, किसे नूं लब्भा नहीं, किसे नूं दर्शन नसीब नहीं होए, गुरसिखां ने उहनां नूं लभ लिया, संगत विचों लभ लिया, गुरु शब्द विचों लभ लिया, और ऐसा लभिया इन्ने नेड़े हो गए, इन्ना प्यार पा लिया, इन्नी सांझ पा ली, प्यो पुत्रावां एकमेक हो गए। और फिर एक होर गल, वो जग भोग जोग ध्यान करने वाले तो कई बार संसार नूं छड्ड के बाहर भटकते नजर आए, गुरु का सिख संसार च रहिंदिया होए घर बार च रहिंदिया होए परस्पर सत्कार दा अधिकारी बन के एक दूजे विच सतगुरु दे दर्शन करदा होया एक दूजे पैरी पैंदा नजर आउंदा, और इस संसार च रहिंदिया होए प्रभु दे प्यार नूं मानदिया गुरु दे प्यार नूं मानदिया होया माया विच उदास रखाया। पर एक गल है, जे तां गुरु नाल गल्लां करनियां ने ते गुर शब्द नूं विचारांगे, जे गुरु के नजदीक होना है गुरु नाल विचार दी सांझ पाउणी है, प्यार दी सांझ पाउणी है ते गुर शब्द दी सांझ भी पाउणी पड़ेगी। लेकिन जे कदे गुरु नूं प्रसन्न करना होवे ते महाराज पावन बाणी च कहिंदे ने, साहिब कहिंदे ने गुर सिखां अंदर सतगुर वरतै जो सिखां नूं लोचै सो गुर खुशी आ, जिहड़ा गुरसिखां नूं प्यार करदा गुरु की खुशी लैंदा, विच संगत हर प्रभ वसै जी, इसे संगत च गुरसिखां विच वाहिगुरु आप वसदा, इन्हां दी खुशी गुरु की खुशी पार ब्रह्म दी खुशी। इसे करके गुरमुखां गुरसिखां सत्संगियां ने गुरु प्यार वालिया शब्द विचार वालिया नाम की कमाई वालिया की खुशी लैण दा यतन कीता सर। और भाई साहब पुन भी बड़ा कहंदे, भाई साहब कहंदे ने जे किते गुरसिखां दी सेवा च लग जाइए ते गुरु वालों बड़ियां खुशियां प्राप्त होंदियां ने, एडा वड्डा पुन है जिहड़े उसले प्रचंड पुन्नां दीआं गल्लां सन, जिहड़े जतन लोग प्रभु प्रसन्नता दे करदे सन,

ऐसा पुल है। भाई साहब कहते ने एक बारी नहीं पांच बारी गंगा चला जाए, पांच पांच बारी प्रयागराज ला के त्रिवेणी दे इशनान करे, एक सिख नू इशनान करा दे, एक सिख नू नहाउण वास्ते इशनान वास्ते पानी भर के देवे, उहदे इशनान दा प्रबंध कर देवे, इन्ना पुल है। कहते ने सिख नू प्यार नाल पानी पियाता, वैसे तो सब नू ही पियाउणा चाहिए, पर गुरु के सिख नू गुरु शब्दी विचार वाले नू गुरु प्यार वाले नू आदर सत्कार नाल पानी पिया दिता। समझ लो कुरुखेत्र की यात्रा हो गई, कुरुक्षेत्र वर्गे महान तीर्थ की यात्रा हो गई, ते जे किते सिख नू प्रशादा छका दिता प्यार नाल भाव करके, लंगर छका दिता है ते असमेध जग कर लिया, थोड़ा नहीं बहुत वड्डा पुन हो गया। भाई साहब कहते एक होर वड्डा पुन भी है, एडो भी वड्डा पुन है, जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दी, कोई सोने का मकान एक अद्धा बना सकता है, मिट्टी का ही बनाने मसा मसा बनना, एक नहीं सत सत मकान सोने दे कोई बना के दान कर दे, जे कि सिख नू शब्द सिखा दे, शब्द सुना दे, शब्द के लड़ ला दे, उदो वड्डा पुन। सत सत सोने दे मकान बना के दान करन नालों एक सिख नू शब्द सिखा दे, गुरु के शब्द के लड़ ला दे। एक होर गल कहने साधा के दर्शन करने वास्ते, महात्मावां के दर्शन करने वास्ते, उन्हां आत्मा के दर्शन करने वास्ते लोग तीर्थां ते भटकदे ने, पर भी वारी किसे साधु दर्शन करने जाना एक पासे ते किसे गुरसिख नूं मुठियां भर के सवा देना एक पासे। इस छोटे जतन नाल वड्डा फल, बहुत वड्डा महात्म है, गुरु के सिख की खुशी गुरु की खुशी है। और एक बारी ऐसा होया सी, भाई सत्ता बलवंड कीर्तन करके हटे सन, उठे ते अगों बाबा बुढ़ा जी मिल गया, कहन लगे भाई सत्ता अज मैं पछड़ गया, एक शब्द मैनू भी सुना दे। कहन लगे बाबा इस तरह थोड़ा कीर्तन सुनाया जाता, उथे आके सुनिया कर। बाबा निराश होके जा बैठा, संगत गुरु के बचन सुन लै, साहब गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह दे बचन सुन लै। शाम होई कीर्तन करन आउण बैठे, महाराज दूजे पासे मुंह करके बैठ गए, परेशान होए, हथ बन्ने, महाराज कहन लगे नहीं तुहाडा कीर्तन सुनना, तुसी मेरे सिख नूं शब्द नहीं सुनाया, मेरे की लगदे, मेरे सिख की खुशी नहीं लई, मेरे की लगदे,

हुआ है। जैसे कपने कपड़े बुनने वाला जुलाहा एक एक तागे की तंद को जोड़ जोड़ कर कपना बनाता है, पर ऐसा भी हो जाता है जब ये तागों की तंदें उलझ जाती हैं तो कपड़ा बनना रुक जाता है। जो कपड़ा बनाने का कार्य है रुक जाएगा। जितनी देर तक इन उलझियों हुई तंदों को कोई सुलझाता नहीं, अपने आप तो जे उलझने मुकेंगी नहीं, सुलझाना ही पड़ेगा। इसको सुलझाने के लिए जिसको सुलझाना आता है वही सुलझा सकता है, पर जितनी देर ये सुलझेंगी नहीं आगे का काम बंद हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही मालूम होता है हमारे जीवन में उलझने ही उलझने हैं। वो सभी उलझने हमारी अपनी ही डाली हुई है। मनुष्य का जो बर्ताव है, स्वभाव है, इसने हमेशा ही सदा ही उलझने डाली है। सुलझाना इसको आता नहीं, और आत्मिक जीवन जीने के लिए सुलझाना बहुत अति जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। देखना कैसी उलझने हैं। फितर शब्द में बताया, श्री रूपी कुआं है, कूटा एक श्री रूपी कुआं है। जो कैसी उलझने हैं, कैसे सुलझेंगी, अपने आप तो सुलझेंगी नहीं। श्री रूपी एक कुआं है, उस कुएं में पांच चरखी लगी हुई है, पांच ज्ञान इंद्रों की, और ऐसी बुद्धि जो विवेक नहीं